0: सकत का नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: बोल जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहेगुरु जी की फतेह। श्री भगौती जी सहाय वार, श्री भगौती जी के पातशाही दसवीं प्रथम भगौती सिमरकै गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास होए सहाय। अर्जन हर गोबिंद नौ सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जस डठ सब दुख जाय। तेग बहादुर

गुर का शब्द पछाण सेखा चौ चकिया चौ बाया इह मन एकत घर आना एहड़ छड तू गुर का शब्द पछाण सतगुर अग्गा ढह पाओ

पौड़ी वड्डी हु वड्डा अपार तेरा मर्तुबा रंग प्रंग अनेक न जापन करतुबा जिया अंदर जियो सब किस जान ला सब किस तेरे

माता तरत महत दिवस रात दोए ताई दया खेले सगल जगत चंगियाइया बुरियाइया वाचे तरम हदूर करमिया पोया पुनी के नेड़े के दूर जिनी नाम ते आया गए म

लग जरा रोग नहीं आया, जब लग काल ग्रसी नहीं काया, जब लग बिकल भई नहीं पानी, बजले रे मन सारंग पानी। अब न भजस भजस कब पाई, अब न भजस भजस

0: जिया अंदर जियो सब किछे जान ला, सब के तेरे वस तेरा घर पला, तेरा घर आनंद वधाए तुद घर, मान महता तेज अपना आप जार, सर्व कला भरपूर देस है जगता, नानक दासन दास तुद आ गए बिनवता।
1: श्लोक पमन गुरु पाणी पिता माता तरत महत, दिवसे रात दुई दाई दाया खेले सगले जगत।

दुख दारू सुख रोग पे आजा सुख कामना होई, तू करता करना मैं नाही, जाहो करी ना होई, बलिहारी कुदरत वसे आ तिरंत ना जाई लख्या रहाओ, जात मह जोत जोत मह जाता कलकला पर पूर रहे।

सहाय दुष्ट दोख ते लेहो बचाई। सवैया पाई गहे जब ते तुमरे तब ती को आंख तरे नहीं आने। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक न मान्यो। सिमृत शास्त्र वेद सब है बहु भेद कहे हम एक न जान्यो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहियो सब तो हे बखान्यो। दोहरा सगल द्वार को शाड कै कहियो तुहार द्वार। बाहीं गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। सगल द्वार को शाड कै गहो तुहार द्वार। बाहीं गहे की लाज अस गोविंद दास तुहार। राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर तां पाया सहज सेती मन वजियां वाधाइयां। राग रतन परवार परियां शब्द गावने आईयां शब्दो तां गावो हरि केरा मन जिनी वसाया। कह नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना। अंगीकार यो करे तेरा कारज सब सवारना। सबना गलां समरत स्वामी सो क्यों मनो विसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले। सचे साहिबा क्या नाही घर तेरा घर तां तेरा सब किश है जिस देह सो पावे। सदा सिवत सला तेरी नाम मन वसावे नाम जिनकै मन वस्या वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधार साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया। कर शांत सुख मन आए वस्या जनिशां सब पुजाइयां। सदा कुर्बान कीता गुरु विट हों जिस दियां इह वडियाइयां। कह नानक सुनहो संतहो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो। वाजे पंच शब्द तित घर सुभागै घर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर धारिया। पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया। तुर करम पाया तुद जिन कहो से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख होआ तित कर अनहद वाजे आनंद
सुनहु बड़ भागी हो, सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म प्रभ पाया, उतरे सगल विसूरे। दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी। संत साजन पे सर से, पूरे गुर ते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। सुनते पुनीत कहते पवित्र, सतगुर रहया भरपूरे। बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूरे। मुंदावणी महला पंजवा। थाल विच तिन वस्तु पइयो, सत संतोख विचारो। अमृत नाम ठाकुर का पयो, जिसका सब सधारो। जे को खावे जे को पुंचे, तिसका होए उधारो। ए वस्त तजी न जाई, नित नित रख और तारो। तम संसार चरण लग तरिया, सब नानक ब्रह्म पसारो। सलोक महला पंजवा, तेरा कीता जा तो नाही, मैं ना जोग की तोई। मैं निर्गुण आरे को गुण नाही, आपे तरस पयोई। तरस पया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन मिलिया। नानक नाम मिले ता जीवा, तन मन थीवै हरिया। तरस पया मेहरामत होई, सतगुर सज्जन

बोलो जी वाहे गुरु। एक ओंकार वाहे गुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती समर कै गुरु नानक लई ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास। रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंदनो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आई है जिस डिठ।

गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी ना जिन नाम ते आया गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुटी ना। वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

नाहि अमृत षाड बिखै बिख खाई माया मोह परम पै भूले सोत दारा स्यो प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेह मिलंत जाम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की गोर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की गोर रामदास राखो शरणाई। सो कहौ टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाई। दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाई। होवै सिफत खसम दी नूर अर सहु कुर सहु चटियै। तुद डिठे सच्चे पाते साह माल जन्म जन्म दी कटियै। सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहां दैसाहु। जिस पास बैठिया सोहियै सबना दा वेसाहु। सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहां दैसाहु। जिस पास बैठिया सोहिए सबना दा वेसा।

जिन मन राखिया अग्नि पाए, वाजै पवन आखै सब जाए। जेता मोह परीत स्वाद, सब्बा कालख दागा दाग। दाग दोस मोह चले आलाए, दरगह बैसण नाही जाए। कर्म मिले आखण तेरा नाओ, जित लागे तरणा होर नहीं थाओ। जे को डूबै फिर होवै सार,

त्वय सर्वनाम कथय कवन कर्म नाम वर्ण सुमत निमाण्यो के मान तान्यो के तान्यो ट्यो कियो ने आश्रयों के आसरा तन तन श्री गुरु।

श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असरा जय की धुनी। श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने।

अपने आप साजो अपने रचो नाओ दो कुदरत साजिए कर आसन डिठो चा दाता करता आप ही तुझ देवा करे बसाओ तू जानो सबसे दिले सुझ।

पंडित हिकमत हुज्जत संजय करे पिया धर्मी धर्म करे गावा वह मंगे मोख द्वार जति सदा वह जुगत न जाने छड बह कर बार सब को पूरा आपे होवे घट न कोई आखे पत परवाना पिछे पाई है ता नानक तोलिया जपे।

कृष्णं सर्वदेवा, ए कृष्णं सर्वदेवा, देव देवा तया आत्मा, आत्मा बास देवस जे को जाने पे ओ।

0: भगत उच्चर अमर गुर इतरंग रातो मस्तक निशान सच्चो कर्म कल जोड़ कर त्यायो परस्यो गुरु सतगुर तिलक सर्ब इच तिन पायो।
1: चरण तपर सिके हथ चरण गुर अमर पवलरा हथ तपर सिके हथ हथ लगा गुर अमर पै जिहि तपर सिके हथ जिहि गुर अमर पनीजा नैन तपर सिके हथ नैन गुर अमर पखीजा सरन तपर सिके हथ सरन गुर अमर सुनीजा सिक्या सोहियो जित ही अबसा गुर अमरदास निज जगत पित सिक्या सो सिर जालप भना जो सिर निवा गुर अमर।

फेर बटाइए ज्ञानी बुझता है सतजुग रथ संतोख का धर्म ग्रथवा हो त्रेतै रथ जतै का जोर ग्रथवा हो द्वापर रथ तपै का।

पौड़ी सब को आके अपना जिसना ही सोचन कटी है किता को अपना पे ही लेखा संडी है जा रहा ना ही ऐत जग का काट गार भंडी है मदा किसे ना की।

रंग हसें रंग रोवे चुप भी कर जा परवा नहीं किसे केरी बाज सच्चे ना दरवाज पर खर्च मंगा जबे देता खाहे दीवाने को कलम एका हमा तुम मेल दर ले।